0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशो ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंता सेरा तुन माई का तक Amina in Roma è nato con le con Gioventuri in Lili, Gioventuri in Papel, Gioventuri in Condizioni, Gioventuri in Futuro, ne sanno bene. Tambanema, ha uno in Gioventuri Barak, Maka, Hakara, Hetan Imprego. Ne problema è stato niente, problema è un individuo niente. E poi, ha un mensaggio, Maka, Tambo Gioventuri da ora la consegue